ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने अमरीका और चीन के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली सरबराही मुलाकात से कबल मस्नूई जहानत एआई से मुतल्लिका वाकयात पर चीन के साथ एक नोटिफिकेशन मैकेनिज्म की तजवीज़ दी है। बेसेंट ने न्यूयॉर्क में चीन के नायब वजीर आजम हा लीफिंग से इतवार के रोज मुलाकात के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू की। वजीर खजाना ने कहा कि दोनों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान जुमेरात के रोज वाशिंगटन में सरबराही मुलाकात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर एआई और तजारत पर तबादला ख्याल किया। बेसेंट ने इंकशाफ किया कि अमरीकी फरीक ने एआई से मुतल्लिका ऐसे वाकयात के लिए अमरीका चीन एआई मकालमे की तजवीज़ पेश की जो कौमी सलामती को मुतासिर कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में नंबर एक और नंबर दो एआई ताकतों के दरमियान ज्यादा शफाफियत की हर तरफ बढ़ना बहुत अहम है। माफ कीजिएगा, उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में नंबर एक और नंबर दो एआई ताकतों के दरमियान ज्यादा शफाफियत की तरफ बढ़ना बहुत अहम है। जापान अमरीका और जनूबी कोरिया के आला सफारतकारों ने शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अपने अज़्म का इरादा किया है। जापानी वजीर खारजा मोतेगी तोशिमित्सू, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और जनूबी कोरिया के वजीर खारजा चो ह्यून ने पीर को न्यूयॉर्क में मुलाकात की, जहां अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास जारी हैं। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि तीनों ममालिक अमली तौर पर मिलकर काम जारी रखेंगे, क्योंकि उनका सेफरीकी तआवुन हिंद बहरुल काहिल में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। उन्होंने बैन अलाक़वामी आफात से मुतालिक इमदादी कोशिशों और जनूब मशरक़ी एशिया में सरहद पार मुजरिमाना सरगर्मियों के खिलाफ इकदामात में तआवुन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़ किया। तीनों ममालिक ने अगली नस्ल के जौहरी रिएक्टर यानी मेयारी रिएक्टर को हिंद बहरुल काहिल और दीगर खित्तों को भेजने के मंसूबे को तेज करने के लिए तआवुन का भी इरादा किया। शुमाली कोरिया के हवाले से मज़कूरा ओहदेदारों ने अगवा के मामलात के फौरी हल के साथ साथ अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के मुकम्मल खात्मे के लिए अपने अज़्म का इरादा किया। उन्होंने शुमाली कोरिया की साइबर से मुतालिक सरगर्मियों से निमटने के लिए सेफरीकी तआवुन की भी तौसीख की, जिनसे हासिल होने वाली आमदनी मुल्क की जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल तरक्की में इस्तेमाल होती है। चीन को मद्देनजर रखते हुए तीनों ओहदेदारों ने खित्ते की सूरतहाल से निमटने के तरीकों पर बातचीत की, जहां ताकत या दबाव के जरिए मुसलमा हैसियत को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिशें देखी जा रही हैं। उन्होंने अपना ताइवान में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। जापानी वजीर खारजा ने गुज़िश्ता माह के तबाहकुन अचानक आने वाले सैलाबी रेले से मुतासरा नेपाल की बहाली के लिए तवील मुद्दत तक मदद जारी रखने के टोक्यो के इरादे का इजहार किया है। मोतेगी तोशिमित्सू ने पीर को न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर नेपाल के वजीर खारजा शिशर खनाल से मुलाकात के दौरान उन्हें इस मंसूबे से आगाह किया। मोतेगी ने कहा कि जापान नेपाल के लिए जो भी मुमकिन हो करने का इरादा रखता है, जिसमें हंगामी इकदामात के लिए इमदाद के साथ साथ दरमियानी और तवील मुद्दती तआवुन शामिल है। मोतेगी ने मुतअद्दिद इकदामात पर मुसलसल अमल दरामद के जरिए नेपाल की कौमी तामीर की कोशिशों के लिए भी मदद का वादा किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे की तरक्की और घरेलू सनतों को फरोग देने का जिक्र किया। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 23 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सनाई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि जापान विधि सम्मत स्वतंत्र और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने और उसके विकास में योगदान देना जारी रखेगा। ताकायची ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत यह कहते हुए की कि कानून के शासन पर आधारित स्वतंत्र और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिसे हमने बढ़ावा दिया है कई मोर्चों पर कठिन चुनौतियों का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में शांति और स्थिरता लाने तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नई चुनौतियों से निपटने और समृद्ध बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का महत्व आज पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि जापान इस वैश्विक संस्था के प्रति अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाना जारी रखेगा। उत्तर कोरिया के मुद्दे पर ताकायची ने रूस के साथ उसके बढ़ते सैन्य सहयोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों की प्रगति को सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन बताया। ताकायची ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से जापान एक शांति प्रिय राष्ट्र होने के नाते किसी भी विवाद के निपटारे में कानून के शासन को बहुत महत्व देता रहा है। उन्होंने कहा कि यह बात जापान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों को दिए गए निरंतर समर्थन और न्यायाधीशों के योगदान से स्पष्ट होती है। संयुक्त राष्ट्र सुधारों के संदर्भ में ताकायची ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर से तथाकथित शत्रु राष्ट्र शब्द को हटाने का आह्वान किया। ये शब्द द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुए जापान और जर्मनी जैसे देशों को शत्रु देश के रूप में इंगित करते हैं। ताकायची ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के बाद से पिछले 70 वर्षों में जापान ने अपनी विशुद्ध रक्षा उन्मुख नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और समृद्धि में निरंतर योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यह नीति अपरिवर्तित रहेगी। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सनाई और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रक्षा और आर्थिक सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग की पुष्टि करने के लिए एक बैठक हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर हुई। ट्रंप ने कहा कि जापान का उद्योग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत बड़ा सुधार हुआ है और ताकायची के साथ खड़े होना मेरे लिए सम्मान की बात है। वे मेरी मित्र हैं, पिछले कुछ समय में हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए हैं और वे एक बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगी। ताकायची ने जवाब दिया कि वे इस अवसर पर दुनिया को अपने गठबंधन की ताकत दिखाना चाहेंगी। उन्होंने आगे कहा कि एआई, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों के जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सुरक्षा सहयोग आगे बढ़ रहा है। आर्थिक मोर्चे पर ताकायची ने उल्लेख किया कि जापान लगातार 7 वर्षों से अमेरिका में सबसे बड़ा निवेशक रहा है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। ताकायची ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का मुद्दा भी उठाया। ट्रंप प्रशासन आईसीसी पर कड़ा रुख अपना रहा है। दोनों नेताओं ने खुलकर अपने विचार रखे, जिसमें ताकायची ने कानून के शासन पर जोर देते हुए जापान की स्थिति स्पष्ट की।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। तूफान दुजैन से जापान के कांतो क्षेत्र में रिकॉर्ड मात्रा में बारिश और कई जगह भूस्खलन हुआ, जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लापता हैं। ये शक्तिशाली तूफान सोमवार से मंगलवार तक जापान की ओर बढ़ता रहा। इसके चलते बारिश के घने बादल छा गए, जो टोक्यो सहित कांतो क्षेत्र और आसपास के प्रीफेक्चरों पर कई घंटों तक बने रहे। कांतो क्षेत्र के 8 स्थानों पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। तूफान दुजैन के कारण भारी बारिश से चीबा प्रीफेक्चर के किमित्सु शहर में पुरानी कारों के एक शोरूम के परिसर में भारी मात्रा में कीचड़ और मलबा बहकर आ गया है। लगभग 70 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें से कुछ मलबे के नीचे दब गए। पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति की इस कंपनी के परिसर में 100 वाहन और गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स थे। जब उन्होंने मंगलवार को जांच की तो पाया कि लगभग 1 से 2 मीटर की ऊंचाई तक कीचड़ और मलबा जमा हुआ था और कई कारें मलबे के नीचे दबी हुई थीं। उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए अकेले ही सारी मिट्टी और मलबा हटाना मुश्किल होगा और वे प्रशासन से सहायता लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ियों के कीचड़ में दब जाने के कारण उनका काम ठप्प हो गया है। उन्हें इस बात की चिंता है कि नुकसान के बाद वे अपना कारोबार जारी रख पाएंगे या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि भारी बारिश इतनी भयावह हो सकती है, इसका उन्हें एहसास हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मीडिया केंद्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद टीवी चैनलों के साथ टकराव बढ़ गया और अब व्हाइट हाउस ने एक नया ट्रंप टीवी लॉन्च किया है। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वे सीएनएन, एमएस नाउ और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस की खबरें कवर करने से रोक रहे हैं। एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका के प्रमुख टीवी नेटवर्कों ने सोमवार से राष्ट्रपति के कार्यक्रमों का संयुक्त प्रसारण नहीं होने दिया। इसके कारण राष्ट्रपति ने जिन कार्यक्रमों में भाग लिया था उनका वीडियो या ऑडियो उपलब्ध नहीं हो पाया। उसी दिन व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि उसने एक निजी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का उपयोग करके 24 घंटे चलने वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्रंप टीवी लॉन्च किया है। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर कहा, हर बड़ा क्षण आपके टीवी पर नहीं दिखाया जाता, अब दिखाया जाएगा। उसी दिन बाद में प्रसारण शुरू हुआ। प्रसारण की शुरुआत एक वीडियो से हुई, जिसमें कई अमरीकी एनिमे और धारावाहिक दृश्यों की पृष्ठभूमि में ट्रंप टीवी शीर्षक था। इसके बाद ट्रंप के एक पुराने भाषण का वीडियो दिखाया गया।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सनाई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि जापान विधि सम्मत, स्वतंत्र और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने और उसके विकास में योगदान देना जारी रखेगा। ताकायची ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। और तूफान दुजियन से जापान के कांतो क्षेत्र में रिकॉर्ड मात्रा में बारिश और कई जगह भूस्खलन हुआ, जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लापता हैं। और इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 30वें पाठ में आप सीखेंगे कई क्रियाएं एक साथ बताना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ एक कैफे में आई है। ताम मिया को जापानी छात्र यूकी के बारे में बता रही है जो संगीत का अध्ययन कर रहा था।
0: तो आइए सुनते हैं 30वें पाठ की बातचीत।
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास। ओइशो।
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
4: वियतनाम देस। 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले कैफे कर्मचारी ने दोनों को पार्फे देते हुए कहा,
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास।
1: ये लीजिए मेरोन पफे।
0: पार्फे देखकर ताम उत्सुकता से बोली,
2: ओइशो,
1: स्वादिष्ट लग रहे हैं।
0: दोनों पार्फे खाने लगी। फिर मिया ने पूछा,
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
1: ताम, तुम यूकी जी से कहाँ मिली थी?
0: ताम ने उत्तर दिया,
4: वियतनाम देस।
1: वियतनाम में।
4: 小学校 दे बोरांटिया ओ शिमास्ता।
1: हम एक प्राथमिक स्कूल में स्वयं सेवी थे।
4: इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमास्ता।
1: साथ में गाने गाते थे और नाचते थे।
0: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: सो दत्ता नो।
1: अच्छा।
0: फिर ताम ने आगे कहा,
4: हाय, यूकी-सान नी आइताई देस।
1: हाँ, यूकी जी से मिलना चाहती हूँ।
0: लगता है ताम और यूकी को स्कूल के बच्चों के साथ नाचने गाने में बहुत मजा आता था। अगर दोनों फिर से एक दूसरे से मिल पाए तो कितना अच्छा होगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
4: इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमास्ता,
1: यानी साथ में गाने गाते थे और नाचते थे। ये वाक्य सीखकर आप कई क्रियाओं के बारे में एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में,
3: उतात्तारी
0: है क्रिया,
3: उताउ
0: यानी गाना का,
3: तारी
0: रूप, और
3: ओदोत्तारी
0: है क्रिया,
3: ओदोरु
0: यानी नाचना का,
3: थारी
0: रूप, और वाक्य के अंत में लगा है
3: शिमाश्ता,
0: जिसका मतलब है किया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कई क्रियाओं में से कुछ के उदाहरण देते समय क्रिया के
3: थारी
1: रूप का उपयोग करते हैं। तारी रूप बनाने के लिए पहले क्रिया का ते रूप बनाइए और फिर उसमें से ते हटाकर तारी जोड़िए।
0: जैसे इस वाक्य में ताम बता रही है कि स्वयं सेवियों के तौर पर वो और यूकी साथ में बहुत सारे काम करते थे, जिनमें से दो उदाहरण हैं गाना और नाचना। इसलिए ताम ने कहा उतात्तारी ओदोत्तारी।
1: और क्योंकि ये पुरानी बात है, इसलिए ताम ने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिमाश्ता,
1: जो करना का भूतकाल रूप है।
0: तो अब आप भी ये वाक्य सुनकर साथ साथ उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
3: उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता। इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता।
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं, जिसमें एक पर्यटक बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का? हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा,
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का?
0: होक्काइडो में क्या करने वाले हैं?
1: यहाँ
3: होक्काइडो दे
1: का अर्थ है होक्काइडो में और
3: नानी ओ शिमास
1: का अर्थ है क्या करने वाले हैं। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
5: हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: हाइकिंग करना चाहता हूँ और ओनसेन में नहाना चाहता हूँ।
6: हाइकिंग वो स्टारी
1: है।
6: हाइकिंग वो सुरु
1: यानी हाइकिंग करना का तारी रूप और
6: ओनसेन नी हाइतारी
1: है।
6: ओनसेन नी हाइरु
1: यानी ओनसेन में नहाने का तारी रूप।
0: इस वाक्य में दूसरे आदमी ने अपनी इच्छा बताई, इसलिए उसने वाक्य के अंत में लगाया
6: स्टाई डेस
0: यानी करना चाहता हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि तारी का इस्तेमाल पुरानी बात बताने के लिए भी किया जा सकता है और भविष्य की बात या इच्छा बताने के लिए भी।
1: तो वाक्य सुनिए और साथ साथ दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
6: हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस। हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप ओकिनावा घूमने गए थे और किसी ने आपसे पूछा कि आपने वहां पर क्या किया। आप उन्हें बताना चाहते हैं कि खरीदारी की और समुद्र में तैराकी की।
1: खरीदारी करना को जापानी भाषा में कहते हैं
6: काइमोनो सुरु। काइमोनो सुरु
1: क्रिया
6: सुरु
1: यानी करना का तारी रूप है
6: शितारी।
1: और समुद्र में तैरना को जापानी भाषा में कहेंगे
6: उमी दे ओयोग। उमी दे ओयोग
1: क्रिया तैरना का तारी रूप है
6: ओयोइदारी। ओयोइदारी
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: काइमोनो ओ शितारी उमी दे ओयोइदारी शिमाशिता।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: ओइशो।
6: ओइशो
0: का अर्थ है स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आपने कोई चीज अभी तक नहीं खाई है और वो दिखने में स्वादिष्ट लग रही है तो आप कहेंगे
6: ओइशो।
0: कोई चीज खाकर अगर स्वादिष्ट लगे तो कहेंगे
6: ओइशी।
1: अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
6: ओइशो।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
7: काइटो नी ओमाकासे।
1: अब हम लेकर आए हैं अंश काइटो के साथ खाना पीना। आज के पाठ में ताम और मिया ने मेरोन पाफे खाया, इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की मिठाइयों और नमकीन के बारे में।
0: जापान में मिठाइयों और नमकीन में बहुत विविधता देखने को मिलती है। इनमें जापान की पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन के अलावा पश्चिमी शैली की मिठाइयाँ और नमकीन भी शामिल हैं।
1: लेकिन पश्चिमी शैली की बहुत सारी मिठाइयाँ भी यहाँ जापान के रंग में ढल चुकी हैं। जैसे जापान के शॉर्ट केक का उदाहरण लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक जैसा दिखता है, लेकिन इसमें स्पंज केक का इस्तेमाल होता है।
0: कुछ आम जापानी मिठाइयाँ और नमकीन हैं चावल की टिक्कियाँ, चावल के पापड़ और लाल मूंग के मीठे पेस्ट भरे बन। इनके अलावा मौसमी विशिष्टताएं भी हैं, जैसे गर्मियों में तरह तरह की बर्फ की चुस्कियां और सर्दियों में लाल मूंग का मीठा सूप।
1: जापान की मिठाइयां सुंदर दिखने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वसंत में चेरी के फूलों और पत्तों वाली चावल की टिक्कियां और गर्मियों में सितारों जड़े आसमान या साफ नदी जैसी छवियों पर आधारित ताजगी भरी मिठाइयां बहुत आकर्षक लगती हैं।
0: जापान में आप भी यहाँ की मिठाइयों की खूबसूरती और स्वाद का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में जापान की पॉप संस्कृति का जानकार माइक हारुसान हाउस आएगा। तब तक के लिए सायोनारा।
8: साई फोसो राजियो निप्पन देस। टोक्यो करा ओकुरी शिमासु।
9: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 23 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सनाई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि जापान विधि सम्मत स्वतंत्र और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने और उसके विकास में योगदान देना जारी रखेगा। ताकायची ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत यह कहते हुए की कि कानून के शासन पर आधारित स्वतंत्र और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिसे हमने बढ़ावा दिया है कई मोर्चों पर कठिन चुनौतियों का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में शांति और स्थिरता लाने तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नई चुनौतियों से निपटने और समृद्ध बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का महत्व आज पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि जापान इस वैश्विक संस्था के प्रति अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाना जारी रखेगा। उत्तर कोरिया के मुद्दे पर ताकायची ने रूस के साथ उसके बढ़ते सैन्य सहयोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों की प्रगति को सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन बताया। ताकायची ने कहा कि ताकायची ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से जापान एक शांति प्रिय राष्ट्र होने के नाते किसी भी विवाद के निपटारे में कानून के शासन को बहुत महत्व देता रहा है। उन्होंने कहा कि यह बात जापान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों को दिए गए निरंतर समर्थन और न्यायाधीशों के योगदान से स्पष्ट होती है। संयुक्त राष्ट्र सुधारों के संदर्भ में ताकायची ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर से तथाकथित शत्रु राष्ट्र शब्द को हटाने का आह्वान किया। ये शब्द द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुए जापान और जर्मनी जैसे देशों को शत्रु देश के रूप में इंगित करते हैं। ताकायची ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के बाद से पिछले 70 वर्षों में जापान ने अपनी विशुद्ध रक्षा उन्मुख नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और समृद्धि में निरंतर योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ये नीति अपरिवर्तित रहेगी। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सनाई और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रक्षा और आर्थिक सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग की पुष्टि करने के लिए एक बैठक हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर हुई। ट्रंप ने कहा कि जापान का उद्योग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत बड़ा सुधार हुआ है और ताकायची के साथ खड़े होना मेरे लिए सम्मान की बात है। वे मेरी मित्र हैं, पिछले कुछ समय में हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए हैं और वे एक बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगी। ताकायची ने जवाब दिया कि वे इस अवसर पर दुनिया को अपने गठबंधन की ताकत दिखाना चाहेंगी। उन्होंने आगे कहा कि एआई, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों के जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सुरक्षा सहयोग आगे बढ़ रहा है। आर्थिक मोर्चे पर ताकायची ने उल्लेख किया कि जापान लगातार 7 वर्षों से अमेरिका में सबसे बड़ा निवेशक रहा है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। ताकायची ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का मुद्दा भी उठाया। ट्रंप प्रशासन आईसीसी पर कड़ा रुख अपना रहा है। दोनों नेताओं ने खुलकर अपने विचार रखे, जिसमें ताकायची ने कानून के शासन पर जोर देते हुए जापान की स्थिति स्पष्ट की।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। तूफान दुजैन से जापान के कांतो क्षेत्र में रिकॉर्ड मात्रा में बारिश और कई जगह भूस्खलन हुआ, जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लापता हैं। ये शक्तिशाली तूफान सोमवार से मंगलवार तक जापान की ओर बढ़ता रहा। इसके चलते बारिश के घने बादल छा गए, जो टोक्यो सहित कांतो क्षेत्र और आसपास के प्रीफेक्चरों पर कई घंटों तक बने रहे। कांतो क्षेत्र के 8 स्थानों पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। तूफान दुजैन के कारण भारी बारिश से चीबा प्रीफेक्चर के किमित्सु शहर में पुरानी कारों के एक शोरूम के परिसर में भारी मात्रा में कीचड़ और मलबा बहकर आ गया है। लगभग 70 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें से कुछ मलबे के नीचे दब गए। पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति की इस कंपनी के परिसर में 100 वाहन और गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स थे। जब उन्होंने मंगलवार को जांच की तो पाया कि लगभग 1 से 2 मीटर की ऊंचाई तक कीचड़ और मलबा जमा हुआ था और कई कारें मलबे के नीचे दबी हुई थीं। उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए अकेले ही सारी मिट्टी और मलबा हटाना मुश्किल होगा और वे प्रशासन से सहायता लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ियों के कीचड़ में दब जाने के कारण उनका काम ठप्प हो गया है। उन्हें इस बात की चिंता है कि नुकसान के बाद वे अपना कारोबार जारी रख पाएंगे या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि भारी बारिश इतनी भयावह हो सकती है, इसका उन्हें एहसास हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मीडिया केंद्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद टीवी चैनलों के साथ टकराव बढ़ गया और अब व्हाइट हाउस ने एक नया ट्रंप टीवी लॉन्च किया है। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वे सीएनएन, एमएस नाउ और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस की खबरें कवर करने से रोक रहे हैं। एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका के प्रमुख टीवी नेटवर्कों ने सोमवार से राष्ट्रपति के कार्यक्रमों का संयुक्त प्रसारण नहीं होने दिया। इसके कारण राष्ट्रपति ने जिन कार्यक्रमों में भाग लिया था उनका वीडियो या ऑडियो उपलब्ध नहीं हो पाया। उसी दिन व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि उसने एक निजी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का उपयोग करके 24 घंटे चलने वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्रंप टीवी लॉन्च किया है। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर कहा, हर बड़ा क्षण आपके टीवी पर नहीं दिखाया जाता, अब दिखाया जाएगा। उसी दिन बाद में प्रसारण शुरू हुआ। प्रसारण की शुरुआत एक वीडियो से हुई, जिसमें कई अमरीकी एनिमे और धारावाहिक दृश्यों की पृष्ठभूमि में ट्रंप टीवी शीर्षक था। इसके बाद ट्रंप के एक पुराने भाषण का वीडियो दिखाया गया।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सनाई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि जापान विधि सम्मत, स्वतंत्र और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने और उसके विकास में योगदान देना जारी रखेगा। ताकायची ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। और तूफान दुजियन से जापान के कांतो क्षेत्र में रिकॉर्ड मात्रा में बारिश और कई जगह भूस्खलन हुआ, जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लापता हैं। और इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 30वें पाठ में आप सीखेंगे कई क्रियाएं एक साथ बताना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ एक कैफे में आई है। ताम मिया को जापानी छात्र यूकी के बारे में बता रही है जो संगीत का अध्ययन कर रहा था।
0: तो आइए सुनते हैं 30वें पाठ की बातचीत।
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास। ओइशो।
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
4: वियतनाम देस। 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले कैफे कर्मचारी ने दोनों को पार्फे देते हुए कहा,
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास।
1: ये लीजिए मेरोन पफे।
0: पार्फे देखकर ताम उत्सुकता से बोली,
2: ओइशो।
1: स्वादिष्ट लग रहे हैं।
0: दोनों पार्फे खाने लगीं। फिर मिया ने पूछा,
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
1: ताम, तुम यूकी जी से कहाँ मिली थी?
0: ताम ने उत्तर दिया,
4: वियतनाम देस।
1: वियतनाम में।
4: 小学校でボランティアをしました।
1: हम एक प्राथमिक स्कूल में स्वयं सेवी थे।
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました।
1: साथ में गाने गाते थे और नाचते थे।
0: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: そうだったの।
1: अच्छा।
0: फिर ताम ने आगे कहा,
4: はい, ゆうきさんに会いたいです।
1: हाँ, यूकी जी से मिलना चाहती हूँ।
0: लगता है ताम और यूकी को स्कूल के बच्चों के साथ नाचने गाने में बहुत मजा आता था। अगर दोनों फिर से एक दूसरे से मिल पाए तो कितना अच्छा होगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました।
1: यानी साथ में गाने गाते थे और नाचते थे। ये वाक्य सीखकर आप कई क्रियाओं के बारे में एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: 一緒に
0: का अर्थ है साथ में,
3: 歌ったり
0: है क्रिया,
3: 歌う
0: यानी गाना का
3: たり
0: रूप, और
3: 踊ったり
0: है क्रिया,
3: 踊る
0: यानी नाचना का
3: तारी
0: रूप, और वाक्य के अंत में लगा है
3: しました,
0: जिसका मतलब है किया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कई क्रियाओं में से कुछ के उदाहरण देते समय क्रिया के
3: तारी
1: रूप का उपयोग करते हैं। तारी रूप बनाने के लिए पहले क्रिया का ते रूप बनाइए और फिर उसमें से ते हटाकर तारी जोड़िए।
0: जैसे इस वाक्य में ताम बता रही है कि स्वयं सेवियों के तौर पर वो और यूकी साथ में बहुत सारे काम करते थे, जिनमें से दो उदाहरण हैं गाना और नाचना। इसलिए ताम ने कहा उतातारी उदोतारी।
1: और क्योंकि ये पुरानी बात है इसलिए ताम ने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिमाश्ता,
1: जो करना का भूतकाल रूप है।
0: तो अब आप भी ये वाक्य सुनकर साथ साथ उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
3: उतातारी ओदोतारी शिमाश्ता। इश्शो नी उतातारी ओदोतारी शिमाश्ता।
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का? हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा,
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का?
0: होक्काइडो में क्या करने वाले हैं?
1: यहाँ
3: होक्काइडो दे
1: का अर्थ है होक्काइडो में और
3: नानी ओ शिमास का
1: का अर्थ है क्या करने वाले हैं। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
5: हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: हाइकिंग करना चाहता हूँ और ओनसेन में नहाना चाहता हूँ।
3: हाइकिंग वो शितारी
1: है।
3: हाइकिंग वो सुरु
1: यानी हाइकिंग करना का तारी रूप, और
3: ओनसेन नी हाइतारी
1: है
3: ओनसेन नी हाइरु
1: यानी ओनसेन में नहाने का तारी रूप।
0: इस वाक्य में दूसरे आदमी ने अपनी इच्छा बताई, इसलिए उसने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिताई देस
0: यानी करना चाहता हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि तारी का इस्तेमाल पुरानी बात बताने के लिए भी किया जा सकता है और भविष्य की बात या इच्छा बताने के लिए भी।
1: तो वाक्य सुनिए और साथ साथ दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
3: हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस। हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप ओकिनावा घूमने गए थे और किसी ने आपसे पूछा कि आपने वहां पर क्या किया। आप उन्हें बताना चाहते हैं कि खरीदारी की और समुद्र में तैराकी की।
1: खरीदारी करना को जापानी भाषा में कहते हैं
3: काइमोनो सुरु। काइमोनो सुरु
1: क्रिया सुरु यानी करना का तारी रूप है
3: शितारी।
1: और समुद्र में तैरना को जापानी भाषा में कहेंगे
3: उमी दे ओयोगु। उमी दे ओयोगु
1: क्रिया तैरना का तारी रूप है
3: ओयोइदारी। ओयोइदारी।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: काइमोनो वो शितारी उमी दे ओयोइदारी शिमाशिता।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: ओइसो।
3: ओइसो
0: का अर्थ है स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आपने कोई चीज अभी तक नहीं खाई है और वो दिखने में स्वादिष्ट लग रही है तो आप कहेंगे
3: ओइसो।
0: कोई चीज खाकर अगर स्वादिष्ट लगे तो कहेंगे
3: ओइशी।
1: अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
3: ओइसो।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना। आज के पाठ में ताम और मिया ने मेरोन पार्फे खाया, इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की मिठाइयों और नमकीन के बारे में।
0: जापान में मिठाइयों और नमकीन में बहुत विविधता देखने को मिलती है। इनमें जापान की पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन के अलावा पश्चिमी शैली की मिठाइयां और नमकीन भी शामिल है।
1: लेकिन पश्चिमी शैली की बहुत सारी मिठाइयाँ भी यहाँ जापान के रंग में ढल चुकी हैं। जैसे जापान के शॉर्ट केक का उदाहरण लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक जैसा दिखता है, लेकिन इसमें स्पंज केक का इस्तेमाल होता है।
0: कुछ आम जापानी मिठाइयाँ और नमकीन हैं चावल की टिक्कियाँ, चावल के पापड़ और लाल मूंग के मीठे पेस्ट भरे बन। इनके अलावा मौसमी विशिष्टताएं भी हैं, जैसे गर्मियों में तरह तरह की बर्फ की चुस्कियां और सर्दियों में लाल मूंग का मीठा सूप।
1: जापान की मिठाइयां सुंदर दिखने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वसंत में चेरी के फूलों और पत्तों वाली चावल की टिक्कियां और गर्मियों में सितारों जड़े आसमान या साफ नदी जैसी छवियों पर आधारित ताजगी भरी मिठाइयां बहुत आकर्षक लगती हैं।
0: जापान में आप भी यहाँ की मिठाइयों की खूबसूरती और स्वाद का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में जापान की पॉप संस्कृति का जानकार माइक हारुसान हाउस आएगा। तब तक के लिए
1: सायोनारा।
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। समुद्री तूफान दुजन से रिकॉर्ड बारिशें होने के बायस जापान के कांतो खित्ते में मिट्टी के तोदे गिरने से अब तक 9 अफराद हलाक हो चुके हैं और 5 लापता हैं। ताकतवर तूफान ने बादोबारा पीर से मंगल तक जापान के करीब आया, जिससे बारिश बरसाने वाले बादल बने जो टोक्यो और उसके आसपास के प्रीफेक्चरों पर मुश्तमिल कांतो खित्ते के ऊपर घंटों मौजूद रहे। कांतो में 8 मकामात पर रिकॉर्ड बारिश हुई। दुजैन हारी तूफान से होने वाली शदीद बारिश के बायस चीबा प्रीफेक्चर के किमित्सु शहर में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की एक डीलरशिप के अहाते में कीचड़ और मलबे की बड़ी मकदार बह आई। 70 के करीब गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से कुछ मलबे तले दब गईं। एक पाकिस्तानी के जरिए इंतजाम इस कंपनी के अहाते में 100 गाड़ियां और पुर्जाजात मौजूद थे। मंगल के रोज मुआयना करने पर उन्हें मालूम हुआ कि मिट्टी और मलबे का ढेर तकरीबन 1 से 2 मीटर ऊंचा है और कई गाड़ियां मलबे तले दब गई हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी के लिए तमाम मिट्टी और मलबे को खुद से हटाना मुश्किल होगा और वो हुक्काम से अफरादी कुव्वत की मदद हासिल करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल काम नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ियां दब गई हैं और वो इस बारे में फिक्रमंद हैं कि क्या नुकसान के बाद वो अपना कारोबार जारी रख सकेंगे या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें एहसास हो गया है कि शदीद बारिश कितनी खौफनाक हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 3 मीडिया आउटलेट्स पर पाबंदी के बाद टीवी नेटवर्क्स के साथ शदीद होते तसादुम के दरमियान व्हाइट हाउस ने एक नया ट्रंप टीवी लॉन्च कर दिया है। ट्रंप ने जुमे को सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वो CNN, MS नाउ और पॉलिटिको पर व्हाइट हाउस की कवरेज करने पर पाबंदी लगा रहे हैं। यकजहती के इजहार में अमरीका के दीगर बड़े टीवी नेटवर्क्स ने पीर तक सदर की मुश्तरका कवरेज को मुअत्तल कर दिया। नतीजतन सदर जिन तकरीबात में शरीक थे उनमें से कुछ की वीडियो या ऑडियो कवरेज नहीं हो सकी। व्हाइट हाउस ने उसी दिन ऐलान किया कि एक निजी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए 24 घंटे चलने वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्रंप टीवी शुरू किया गया है। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर कहा, हर बड़ा लम्हा आपके टीवी तक नहीं पहुंचा है, अब ये हो पाएगा। बादजां उसी दिन नशरियात भी शुरू हो गई। आगाज एक वीडियो के साथ हुआ जिसमें मुख्तलिफ अमरीकी एनिमे और ड्रामा मनाजिर के क्लिप्स के पस मंजर के साथ ट्रंप टीवी का टाइटल दिखाया गया। उसके बाद ट्रंप की पिछली तकरीर की वीडियो चलना शुरू हो गई।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। अक़्वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जापानी वज़ीर आज़म ताकायची सनाए ने कहा है कि जापान कानून की हुक्मरानी पर मबनी आज़ाद और खुले बैन अल-अक़्वामी निज़ाम को बरकरार रखने और तरक्की देने में अपना हिस्सा डालता रहेगा। और जापानी वज़ीर आज़म ताकायची सनाए और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफाई और इक्तिसादी सलामती के उमूर पर तआवुन के इआदे के लिए एक सरबराही इजलास मुनक्किद किया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 23 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सनाई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि जापान विधि सम्मत स्वतंत्र और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने और उसके विकास में योगदान देना जारी रखेगा। ताकायची ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत यह कहते हुए की कि कानून के शासन पर आधारित स्वतंत्र और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिसे हमने बढ़ावा दिया है कई मोर्चों पर कठिन चुनौतियों का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में शांति और स्थिरता लाने तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नई चुनौतियों से निपटने और समृद्ध बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का महत्व आज पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि जापान इस वैश्विक संस्था के प्रति अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाना जारी रखेगा। उत्तर कोरिया के मुद्दे पर ताकायची ने रूस के साथ उसके बढ़ते सैन्य सहयोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों की प्रगति को सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन बताया। ताकायची ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से जापान एक शांति प्रिय राष्ट्र होने के नाते किसी भी विवाद के निपटारे में कानून के शासन को बहुत महत्व देता रहा है। उन्होंने कहा कि यह बात जापान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों को दिए गए निरंतर समर्थन और न्यायाधीशों के योगदान से स्पष्ट होती है। संयुक्त राष्ट्र सुधारों के संदर्भ में ताकायची ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर से तथाकथित शत्रु राष्ट्र शब्द को हटाने का आह्वान किया। ये शब्द द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुए जापान और जर्मनी जैसे देशों को शत्रु देश के रूप में इंगित करते हैं। ताकायची ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के बाद से पिछले 70 वर्षों में जापान ने अपनी विशुद्ध रक्षा उन्मुख नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और समृद्धि में निरंतर योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ये नीति अपरिवर्तित रहेगी। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सनाई और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रक्षा और आर्थिक सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग की पुष्टि करने के लिए एक बैठक हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर हुई। ट्रंप ने कहा कि जापान का उद्योग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत बड़ा सुधार हुआ है और ताकायची के साथ खड़े होना मेरे लिए सम्मान की बात है। वे मेरी मित्र हैं, पिछले कुछ समय में हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए हैं और वे एक बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगी। ताकायची ने जवाब दिया कि वे इस अवसर पर दुनिया को अपने गठबंधन की ताकत दिखाना चाहेंगी। उन्होंने आगे कहा कि एआई, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों के जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सुरक्षा सहयोग आगे बढ़ रहा है। आर्थिक मोर्चे पर ताकायची ने उल्लेख किया कि जापान लगातार 7 वर्षों से अमेरिका में सबसे बड़ा निवेशक रहा है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। ताकायची ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का मुद्दा भी उठाया। ट्रंप प्रशासन आईसीसी पर कड़ा रुख अपना रहा है। दोनों नेताओं ने खुलकर अपने विचार रखे, जिसमें ताकायची ने कानून के शासन पर जोर देते हुए जापान की स्थिति स्पष्ट की।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। तूफान दुजैन से जापान के कांतो क्षेत्र में रिकॉर्ड मात्रा में बारिश और कई जगह भूस्खलन हुआ, जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लापता हैं। ये शक्तिशाली तूफान सोमवार से मंगलवार तक जापान की ओर बढ़ता रहा। इसके चलते बारिश के घने बादल छा गए, जो टोक्यो सहित कांतो क्षेत्र और आसपास के प्रीफेक्चरों पर कई घंटों तक बने रहे। कांतो क्षेत्र के 8 स्थानों पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। तूफान दुजैन के कारण भारी बारिश से चीबा प्रीफेक्चर के खिमित्सु शहर में पुरानी कारों के एक शोरूम के परिसर में भारी मात्रा में कीचड़ और मलबा बहकर आ गया है। लगभग 70 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें से कुछ मलबे के नीचे दब गए। पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति की इस कंपनी के परिसर में 100 वाहन और गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स थे। जब उन्होंने मंगलवार को जांच की तो पाया कि लगभग 1 से 2 मीटर की ऊंचाई तक कीचड़ और मलबा जमा हुआ था और कई कारें मलबे के नीचे दबी हुई थीं। उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए अकेले ही सारी मिट्टी और मलबा हटाना मुश्किल होगा और वे प्रशासन से सहायता लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ियों के कीचड़ में दब जाने के कारण उनका काम ठप्प हो गया है। उन्हें इस बात की चिंता है कि नुकसान के बाद वे अपना कारोबार जारी रख पाएंगे या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि भारी बारिश इतनी भयावह हो सकती है, इसका उन्हें एहसास हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मीडिया केंद्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद टीवी चैनलों के साथ टकराव बढ़ गया और अब व्हाइट हाउस ने एक नया ट्रंप टीवी लॉन्च किया है। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वे CNN, MS Now और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस की खबरें कवर करने से रोक रहे हैं। एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका के प्रमुख टीवी नेटवर्कों ने सोमवार से राष्ट्रपति के कार्यक्रमों का संयुक्त प्रसारण नहीं होने दिया। इसके कारण राष्ट्रपति ने जिन कार्यक्रमों में भाग लिया था उनका वीडियो या ऑडियो उपलब्ध नहीं हो पाया। उसी दिन व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि उसने एक निजी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का उपयोग करके 24 घंटे चलने वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्रंप टीवी लॉन्च किया है। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर कहा, हर बड़ा क्षण आपके टीवी पर नहीं दिखाया जाता, अब दिखाया जाएगा। उसी दिन बाद में प्रसारण शुरू हुआ। प्रसारण की शुरुआत एक वीडियो से हुई, जिसमें कई अमरीकी एनिमे और धारावाहिक दृश्यों की पृष्ठभूमि में ट्रंप टीवी शीर्षक था। इसके बाद ट्रंप के एक पुराने भाषण का वीडियो दिखाया गया।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सनाई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि जापान विधि सम्मत, स्वतंत्र और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने और उसके विकास में योगदान देना जारी रखेगा। ताकायची ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। और तूफान दुजियन से जापान के कांतो क्षेत्र में रिकॉर्ड मात्रा में बारिश और कई जगह भूस्खलन हुआ, जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लापता हैं। और इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 30वें पाठ में आप सीखेंगे कई क्रियाएं एक साथ बताना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ एक कैफे में आई है। ताम मिया को जापानी छात्र यूकी के बारे में बता रही है जो संगीत का अध्ययन कर रहा था।
0: तो आइए सुनते हैं 30वें पाठ की बातचीत।
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास। ओइशो। ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो? वियतनाम देस। 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。अब
1: इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले कैफे कर्मचारी ने दोनों को पार्फे देते हुए कहा,
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास।
1: ये लीजिए मेरोन पफे।
0: पार्फे देखकर ताम उत्सुकता से बोली,
2: ओइशो,
1: स्वादिष्ट लग रहे हैं।
0: दोनों पार्फे खाने लगीं। फिर मिया ने पूछा,
2: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
1: ताम, तुम यूकी जी से कहाँ मिली थी?
0: ताम ने उत्तर दिया,
2: वियतनाम देस।
1: वियतनाम में।
2: शोगाक्को दे बोरांटिया ओ शिमाश्ता।
1: हम एक प्राथमिक स्कूल में स्वयंसेवी थे।
2: इश्शो नी उतत्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता।
1: साथ में गाने गाते थे और नाचते थे।
0: ये सुनकर मिया ने कहा,
2: सो दत्ता नो।
1: अच्छा।
0: फिर ताम ने आगे कहा,
2: हाय, यूकी-सान नी आइताई देस।
1: हाँ, यूकी जी से मिलना चाहती हूँ।
0: लगता है ताम और यूकी को स्कूल के बच्चों के साथ नाचने गाने में बहुत मजा आता था। अगर दोनों फिर से एक दूसरे से मिल पाए तो कितना अच्छा होगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: इश्शो नी उतत्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता।
1: यानी साथ में गाने गाते थे और नाचते थे। ये वाक्य सीखकर आप कई क्रियाओं के बारे में एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में,
3: उतत्तारी
0: है क्रिया,
3: उताउ
0: यानी गाना का,
3: तारी
0: रूप, और
3: ओदोत्तारी
0: है क्रिया,
3: ओदोरु
0: यानी नाचना का,
3: थारी
0: रूप, और वाक्य के अंत में लगा है
3: शिमाश्ता
0: जिसका मतलब है किया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कई क्रियाओं में से कुछ के उदाहरण देते समय क्रिया के
3: थारी
1: रूप का उपयोग करते हैं। तारी रूप बनाने के लिए पहले क्रिया का ते रूप बनाइए और फिर उसमें से ते हटाकर तारी जोड़िए।
0: जैसे इस वाक्य में ताम बता रही है कि स्वयं सेवियों के तौर पर वो और यूकी साथ में बहुत सारे काम करते थे, जिनमें से दो उदाहरण हैं गाना और नाचना। इसलिए ताम ने कहा उतात्तारी ओदोत्तारी।
1: और क्योंकि ये पुरानी बात है इसलिए ताम ने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिमाश्ता
1: जो करना का भूतकाल रूप है।
0: तो अब आप भी ये वाक्य सुनकर साथ साथ उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
3: उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता। इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता।
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
4: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का? हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा,
4: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का?
0: होक्काइडो में क्या करने वाले हैं?
1: यहाँ
3: होक्काइडो दे
1: का अर्थ है होक्काइडो में और
3: नानी ओ शिमास
1: का अर्थ है क्या करने वाले हैं। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
4: हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: हाइकिंग करना चाहता हूँ और ओनसेन में नहाना चाहता हूँ।
3: हाइकिंग वो स्टारी
1: है।
3: हाइकिंग वो सुरु
1: यानी हाइकिंग करना का तारी रूप, और
3: ओनसेन नी हाइतारी
1: है
3: ओनसेन नी हाइरु
1: यानी ओनसेन में नहाने का तारी रूप।
0: इस वाक्य में दूसरे आदमी ने अपनी इच्छा बताई, इसलिए उसने वाक्य के अंत में लगाया
3: स्टाई डेस
0: यानी करना चाहता हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि तारी का इस्तेमाल पुरानी बात बताने के लिए भी किया जा सकता है और भविष्य की बात या इच्छा बताने के लिए भी।
1: तो वाक्य सुनिए और साथ साथ दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
3: हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस। हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप ओकिनावा घूमने गए थे और किसी ने आपसे पूछा कि आपने वहां पर क्या किया। आप उन्हें बताना चाहते हैं कि खरीदारी की और समुद्र में तैराकी की।
1: खरीदारी करना को जापानी भाषा में कहते हैं
3: काइमोनो सुरु। काइमोनो सुरु
1: क्रिया सुरु यानी करना का तारी रूप है
3: शितारी।
1: और समुद्र में तैरना को जापानी भाषा में कहेंगे
3: उमी दे ओयोग। उमी दे ओयोग
1: क्रिया तैरना का तारी रूप है
3: ओयोइदारी। ओयोइदारी
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: काइमोनो ओशितारी उमी दे ओयोइदारी शिमाशिता।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: ओइसो।
3: ओइसो
0: का अर्थ है स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आपने कोई चीज अभी तक नहीं खाई है और वो दिखने में स्वादिष्ट लग रही है तो आप कहेंगे
3: ओइसो।
0: कोई चीज खाकर अगर स्वादिष्ट लगे तो कहेंगे
3: ओइशी।
1: अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
3: ओइसो।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना। आज के पाठ में ताम और मिया ने मेरोन पार्फे खाया, इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की मिठाइयों और नमकीन के बारे में।
0: जापान में मिठाइयों और नमकीन में बहुत विविधता देखने को मिलती है। इनमें जापान की पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन के अलावा पश्चिमी शैली की मिठाइयां और नमकीन भी शामिल है।
1: लेकिन पश्चिमी शैली की बहुत सारी मिठाइयाँ भी यहाँ जापान के रंग में ढल चुकी हैं। जैसे जापान के शॉर्ट केक का उदाहरण लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक जैसा दिखता है, लेकिन इसमें स्पंज केक का इस्तेमाल होता है।
0: कुछ आम जापानी मिठाइयाँ और नमकीन हैं चावल की टिक्कियाँ, चावल के पापड़ और लाल मूंग के मीठे पेस्ट भरे बन। इनके अलावा मौसमी विशिष्टताएं भी हैं, जैसे गर्मियों में तरह तरह की बर्फ की चुस्कियां और सर्दियों में लाल मूंग का मीठा सूप।
1: जापान की मिठाइयां सुंदर दिखने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वसंत में चेरी के फूलों और पत्तों वाली चावल की टिक्कियां और गर्मियों में सितारों जड़े आसमान या साफ नदी जैसी छवियों पर आधारित ताजगी भरी मिठाइयां बहुत आकर्षक लगती हैं।
0: जापान में आप भी यहाँ की मिठाइयों की खूबसूरती और स्वाद का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में जापान की पॉप संस्कृति का जानकार माइक हारुसान हाउस आएगा। तब तक के लिए
1: सायोनारा।
5: रेडियो जापान टोक्यो।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। समुद्री तूफान दुजन से रिकॉर्ड बारिशें होने के बायस जापान के कांतो खित्ते में मिट्टी के तोदे गिरने से अब तक 9 अफराद हलाक हो चुके हैं और 5 लापता हैं। ताकतवर तूफान ने बादोबारा पीर से मंगल तक जापान के करीब आया, जिससे बारिश बरसाने वाले बादल बने जो टोक्यो और उसके आसपास के प्रीफेक्चरों पर मुश्तमिल कांतो खित्ते के ऊपर घंटों मौजूद रहे। कांतो में 8 मकामात पर रिकॉर्ड बारिश हुई। दुजैन हारी तूफान से होने वाली शदीद बारिश के बायस चीबा प्रीफेक्चर के किमित्सु शहर में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की एक डीलरशिप के अहाते में कीचड़ और मलबे की बड़ी मकदार बह आई। 70 के करीब गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से कुछ मलबे तले दब गईं। एक पाकिस्तानी के जरिए इंतजाम इस कंपनी के अहाते में 100 गाड़ियां और पुर्जाजात मौजूद थे। मंगल के रोज मुआयना करने पर उन्हें मालूम हुआ कि मिट्टी और मलबे का ढेर तकरीबन 1 से 2 मीटर ऊंचा है और कई गाड़ियां मलबे तले दब गई हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी के लिए तमाम मिट्टी और मलबे को खुद से हटाना मुश्किल होगा और वो हुक्काम से अफरादी कुव्वत की मदद हासिल करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल काम नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ियां दब गई हैं और वो इस बारे में फिक्रमंद हैं कि क्या नुकसान के बाद वो अपना कारोबार जारी रख सकेंगे या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें एहसास हो गया है कि शदीद बारिश कितनी खौफनाक हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 3 मीडिया आउटलेट्स पर पाबंदी के बाद टीवी नेटवर्क्स के साथ शदीद होते तसादुम के दरमियान व्हाइट हाउस ने एक नया ट्रंप टीवी लॉन्च कर दिया है। ट्रंप ने जुमे को सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वो CNN, MS Now और पॉलिटिको पर व्हाइट हाउस की कवरेज करने पर पाबंदी लगा रहे हैं। यकजहती के इजहार में अमरीका के दीगर बड़े टीवी नेटवर्क्स ने पीर तक सदर की मुश्तरका कवरेज को मुअत्तल कर दिया। नतीजतन सदर जिन तकरीबात में शरीक थे उनमें से कुछ की वीडियो या ऑडियो कवरेज नहीं हो सकी। व्हाइट हाउस ने उसी दिन ऐलान किया कि एक निजी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए 24 घंटे चलने वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्रंप टीवी शुरू किया गया है। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर कहा, हर बड़ा लम्हा आपके टीवी तक नहीं पहुंचा है, अब ये हो पाएगा। बादजा उसी दिन नशरियात भी शुरू हो गई। आगाज एक वीडियो के साथ हुआ जिसमें मुख्तलिफ अमरीकी एनिमे और ड्रामा मनाजर के क्लिप्स के पस मंजर के साथ ट्रंप टीवी का टाइटल दिखाया गया। उसके बाद ट्रंप की पिछली तकरीर की वीडियो चलना शुरू हो गई।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में जापानी वजीर आज़म ताकायची सनाए ने कहा है कि जापान कानून की हुक्मरानी पर मबनी आज़ाद और खुले बैन अल-अक़वामी निज़ाम को बरकरार रखने और तरक्की देने में अपना हिस्सा डालता रहेगा। और जापानी वजीर आज़म ताकायची सनाए और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफाई और इक्तिसादी सलामती के उमूर पर तआवुन के इआदे के लिए एक सरबराही इजलास मुनक्किद किया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।